0: ताइनो गुरबेगा मुसापो मुसापो हाँ तो पेगो मु बुना कुयु गो तू या तो सेने यो बेना वको से के तो ने कुनो गया ने ताए न सागी जरूर की पो कनो हाला हो ताला वा गोडियो साए मुझी अभी दिना ब्रको और नकीता baik jahat atas kita berlaku. Terima kasih.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud. Cuit